0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक, संगीत लहर।
1: बुलाना बुलाना, चल दिमाग तू ही बुला। अरे हाँ, बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा।
2: चल बुला, चल बुला।
1: ना बाबा ना, लो मैंने ही बुला।
2: हाँ, तेरी तो जरूर सुनेगा।
1: अरे बुलाना। अच्छा बाबा, बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। कॉफी।

0: Times FM 90.6.
1: Times FM 90.6 मा यो हो
2: सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।

0: टाइम्स एफएम 90.6 यो हो
1: सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।

0: Bacanas.
1: Times FM 90.6 मा यो हो
2: सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा, सुगम श्रृंखला।

0: टाइम्स एफएम 90.6 मा सुन्दै हुनुहुन्छ ऑल टाइम हिट्स हिंदी फिल्म का गीतहरु।
1: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।